0: आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे।
1: वलौ नशा

0: और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि बारे इलाहा शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है।
1: उर्कुब बिरिजलिका हादा मुग्तसलुन बारिदुन वशराब।
0: हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा और पीने को शीरी।
1: वहबना लहू अहलहू वमिथलहुम मअहुम रहमतम मिन्ना वज़िक्रा लिउलिल अलबाब।
0: और हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ उनके बराबर और बख्शे, ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी।
1: वखुद

0: उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे।
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
0: और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी।
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था।
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा।
1: هذا وإن للطاغين لشر مآب
0: ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है।
1: جهنم يصلونها فبئس المآب
0: यानी दोजख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है।
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق
0: ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें।
1: وآخر من شكله أزواج
0: और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे।

0: वो कहेंगे, ऐ परवरदिगार जो उसको हमारे सामने लाया है उसको दोजख में दूना अजाब दे।
1: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار
0: और कहेंगे, क्या सबब है कि यहाँ हम उन शख्सों को नहीं देखते जिनको बुरों में शुमार करते थे।
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار
0: क्या हमने उनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं।
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
0: बेशक ये अहले दोजख का झगड़ना बरहक है।
1: قل

0: उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चार पायों में से आठ जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां फिरे जाते हो?
1: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا

0: गमात तक जाएं तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेकर उस समंदर में कूदना चाहें तो हम उसमें भी आपके साथ जाएंगे। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, आप पर निशात तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो और खुशी खुशी चलो। अल्लाह ने मुझसे दो ग्रोहों में से एक का वादा फरमाया है, वो अल्लाह उस वक्त गोया मैं कौम की कतलगाहें देख रहा हूँ। इस्लामी लश्कर का बकिया सफर। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़फ़रान से आगे बढ़े और चंद पहाड़ी मोड़ से गुजरकर, जिन्हें उसाफर कहा जाता है, दीत नामी एक आबादी में उतरे और हनान नामी पहाड़ नुमा तोदे को दाएं हाथ छोड़ दिया, और उसके बाद बदर के करीब नजूल फरमाया। जसूसी का इकदाम। यहाँ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफीक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हमरा लिया और खुद फराहमी इतलात के लिए निकल पड़े। अभी दूर ही से मक्की लश्कर के कैंप का जायजा ले रहे थे कि एक बूढ़ा अरब मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुरैश और मोहम्मद और सहाबे मोहम्मद का हाल दरियाफ्त किया। दोनों लश्करों के मुतालिक पूछने का मकसद ये था कि आपकी शख्सियत पर पर्दा पड़ा रहे, लेकिन बूढ़े ने कहा, जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हमें बता दोगे तो हम भी तुम्हें बता देंगे। उसने कहा, अच्छा तो ये इसके बदले है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि मोहम्मद और उनके साथी फला रोज निकले हैं। अगर मुझे बताने वाले ने सही बताया है तो आज वो लोग फला जगह होंगे, और ठीक उस जगह की निशानदेही की जहाँ इस वक्त मदीने का लश्कर था, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कुरैश फला दिन निकले हैं। अगर मुझे खबर देने वाले ने सही खबर दी है तो वो आज फला जगह होंगे, और ठीक उस जगह का नाम लिया जहाँ उस वक्त मक्के का लश्कर था। जब बूढ़ा अपनी बात कह चला तो बोला, अच्छा अब ये बताओ कि तुम दोनों किससे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग पानी से हैं, और ये कहकर वापस चल पड़े। बूढ़ा बकता रहा, पानी से हैं? क्या इराक के पानी से हैं? इसी रोज शाम को आपने दुश्मन के हालात का पता लगाने के लिए नए सिरे से एक जासूसी दस्ता रवाना फरमाया। उस कार्रवाई के लिए मुहाजरीन के तीन कायद अली बिन अबी तालिब, जुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन थे। ये लोग सीधे बदर के चश्मे पर पहुंचे। वहां दो गुलाम मक्की लश्कर के लिए पानी भर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। उस वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा ने उन दोनों से हालात दरियाफ्त किए। उन्होंने कहा, हम कुरैश के सके हैं, उन्होंने हमें पानी भरने के लिए भेजा है। कौम को ये जवाब पसंद ना आया। उन्हें तवक्को थी कि ये दोनों अबू सुफियान के आदमी होंगे, क्योंकि उनके दिलों में अब भी बची कुची आरजू रह गई थी कि काफिले पर गलबा हासिल हो। चुनाचे सहाबी ने इन दोनों की जरा सख्त पिटाई कर दी और उन्होंने मजबूर होकर कह दिया कि हम अबू सुफियान के आदमी हैं। उसके बाद मारने वालों ने हाथ रोक लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो नाराजी फरमाई। जब उन दोनों ने सही बात बताई तो आप लोग उन्हें पिटाई कर दी, और जब झूठ कहा तो छोड़ दिया। खुदा की कसम, इन दोनों ने सही कहा था कि ये कुरैश के आदमी हैं। सामईन, यहाँ पर एक वक्फा, और वक्फे से वापस आकर अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
2: In Sadaye Lahore, In Sadaye UCPS, Lotfan Gush Bedahid, FM 92.6, Jahane UCP.
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
4: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें

0: नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना.
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया. आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन.
4: ओनली ऑन वन प्लेस, देन स्टे ट्यून्ड टू 92.6 UCP.

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: हेलो, यू आर लिसनिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम योर RJ रमशाल जैदी विद द न्यू हेल्थ टिप ऑफ द डे। ईटिंग नट्स इज इनक्रेडिबली हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। नट्स हैव अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन के, फाइबर्स, मैग्नीशियम एंड मेनी अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। Nuts boost metabolism and help in reducing weight faster. Almonds increase weight loss by 67% and make metabolism even faster. That's all from the segment Health Tip of the Day. Stay tuned with FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: Health Tips by FM 92.6. Many kids and grown-ups don't drink enough water through the day. Healthy kids drink a lot of water so that they stay fresh and hydrated. Help your kid building a healthy water drinking habit. Drinking water can be made exciting and fun with just a little help with fruits. If your kids get bored by drinking plain water, you can help them by interesting by adding a splash of lemon or fruit juice. Not only will they find the taste interesting, but the add fruity juice will make them more healthy.
1: आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाज़ुन रखकर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.pk पर चेक करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमो की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से नाराजगी की वजह पूछे तो टालमटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।
3: लाहौर's नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
2: Listen to me, baby. You know I'm always thinking about you. So why don't you just forget about everything and come on to me now?

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: after short break.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को दो हजार।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।
2: ये आवाज है

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।